आज बेहों अलेंद अखाही के ड्रोन सादात हेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखने को कैमरा भी नाजन ली द आज अखा को शिंदा नहीं तो को के या फैंस तथा हर ठान को द आज ऐहोत आप अहिया तो ले से या दानी लास्टो नगे को मिशिगन दे तहने अकोन द नेट शिरबल खदा द चेहे की तो बेचनात आयें दाल देही की दे याल तो दोषी आखों दे याल तो खुद एगो आयु को लाइन खुद आ का कॉम्बिक एंड द चिल्ले द तो लिस्टी जने दानीला अकों थोई बिसन्दा चेही के ए या रिक्रेशनल बोर्डर्स जो दब दे ने तो ए यहाँ अस्तोचिंग खुद आ ए ये को अथो हाँ नोटा इल्ल न हाँ आने के अस्तो खुद हुई आ तो लिस्ला खाले बनीना ए यहाँ ती दे आज अखों एट आशीन हट इशीन तन ले थाई को बे हों चान द बे बें द अल्टे तो बॉर्डर तन लेने के ए याद आन आन नाफ में ने जो कुत आ कुत आ ए याद आ इल इन दो ले तन ने जंशिल लाए तो पांता इल इन द हट नीला वाशिंगटन तो तहन ने को लाए सन ने भी ऑफिसर तन लेने तन नो ए याद दी डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेक्सेथ ए याद वल यही के ए या ती दे लाए दें सने तो ना कहले जने दें ना प्रमोट अता तो नहीं लेने ये ए ये चाहे निकट इत से दाने कौन ही लागे ए या आज दिन के नाने शादे नहीं ये है कि ए या ता ऐसे निहित आ ए या ना फिर निजो को होता और नशी के ते को औरता सी के निहित आ ए के इत से की ए दाने को नेवी ए या ती थक दिन दब आ आसा ए सेलर्स दान लॉन्शी प्रमोट अता तो नहीं का नींद Only captain than captain, only one star admiral. A contiaskin hex set will ye get a nast ego not your hyen nil than the trago a son and day. A con a yazed or hot aida hoodsy zagged a nila a dog con a shin a yego eight and a yasad a hoson halong a